चरण सिंह किशन सिंह जी पार्टनर वाले 1000 रुपया आदर कर दे। गुरमीत सिंह जी दफेदार कला प्रसाद दिया दिगा ले माया आदर कर दे। शैलेंद्र सिंह जी मान पिंड 100 रुपया आदर कर दे चढ़दी कला बख्शनी। जसविंदर सिंह सुजान सिंह रामगढ़िया 200 रुपया आदर कर दे दीर्घ आयु दे रोगता बख्शनी। रतन सिंह अमर सिंह जी बांसरी वाले 500 रुपया आदर कर दे रोगता चढ़दी कला बख्शनी। नाजम सिंह जी 500 रुपया आदर कर दे स्वर्गवासी काकी हशमीत कौर जी परिवार वालों माया आदर होई। जसप्रीत सिंह जसमनवीर सिंह गुरमीत सिंह जी पूरन सिंह लंगराली माया आदर कर दे चढ़दी कला बख्शनी। स्वर्गवासी जय सिंह जी दफेदार परिवार वालों 100 रुपया आदर होए। आत्मक शांति लई स्वर्गवासी बसंता कौर दी स्वर्गवासी कमलजीत कौर दी परिवार वालों माया आदर होई। पिछड़ी हुई आत्मा वानु आप जी दे चरण कमला विच निवास बख्शना। स्वर्गवासी माता गुलाब कौर रंजीत सिंह जी शाहू वल्लों किरणदीप सिंह जी शाहू स्वर्गवासी पूरन सिंह किशन सिंह जी का

रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केह। अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कह जै। कोट इंद्र इंद्राण साहे सहाण गणिजै। त्रिभवन महीप सुर नर असुर

पर्वत स्वामी उठ गही मैं तेरी ना तुम डुलहो ना हम गिरते रख लीनी हर मेरी सगल

काल हरिय छेद हरिय भेद हरिय जंत्र हरिय मंत्र हरि सो तेज हरिय तंत्र हरि अजात हरिय पात हरिय मित्र हरिय मात हरिय रोग हरिय शोक हरिय भरम हरि।

वेद वेद योग देव नेत नेत के कहत है। नाचत फिरत मोर बांदर करत घोर दामनी अनेक भाव करियो ही करत है। चंद्रमा ते शीतल न सूरज ते तपत तेज इंद्र सोना राजा भव भूम को भरत है। शिव से तपस्याद ब्रह्मा से न वेद चारि सनत कुमार से तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन काल हास के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फिर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा और विष्णु के वेद और पुराण के तसे वृत समूहन के होए होए बितए है। मोन दी मदार कित असुनि कुमार कित अंसा अवतार कित काल बस भय है। वीर ओ बिकांबर कित गन न परत एत भूम ही तह के फिर भूम ही मिलय है। जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया गई कोस लो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है। मान से महीब ओ दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भुज दंड को करत है। दारा से दिल्ली सर दुर्योधन से मानधारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है। सिज दे करे अनेक तोप जी कपट भेस फोस ती अनेक दा निवावत है। शीस को कहा भयो मल्ल जो पे काढ़त अनेक दंड सो तो दंडौत अस टांग अथ तीस को कहा भयो रुक जो पे डार्यो रहे उर्ध मुख मन तेना मुंड निहरायो आद ईस को कामना अधीन सदा दामना प्रवीण एक भावना विहीन कस पावे जगदीस को। शीस पट गत जाके कान में खजूरा धस मुंड छट गत मित्र पुत्र हूं के शोक सो आंख को चरैया फूल फूल को फुचैया सदा बान को ब्रह्मैया और दूसरो न बोक सो कहा भयो भेड़ जो खसत शीस वृक्षन सो माटी को भचैया बोल पूछ लीज जो कुसो कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेंट पर लोक सो। नाचोई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करोई करत है। एक पाय ठाटे सदा बन में रहत फ्रिच फूक फूक पाव भूम श्रावक धरत है। वाहन अनेक जुग एक ठोर बास करे काग और जीत देश देश बिचरत है। ग्यार के विहीन महादान में न हुजलिन भावना यकीन दिन कैसे के तरत है। जैसे एक सोंगी कहू जो किया बरागी बने कब हूँ संन्यास फेस बन के दिखावई कहूँ पौन हारी कहूँ बैठ लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पर लगावे बारी कहूँ दंड धारी होई के लोगन भ्रमावई कामना अधीन पर नाचत है नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई। पंच बार गीदर पुकारे पर शीतकाल कुंचर ओगा दहा अनेक दा पुकार ही कहा भय जो पे कल वत्र लियो कांसी बीज चीर चीर चोर टाकु ठारन सो मार ही कहा भयो फांसी डार बूढ़ो जड़ गंग धार डार डार फांस ठग मार मार डार ही डूबे नरक धार मूड ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कस ज्ञान को विचार ही। ताप के सहित जो पे पाई अतापनाथ तापना अनेक तरन घायल सहत है। जाप के कियत जो पे पायत अजाप देव बूदना सदीव तुही उचरत है। नभ के उड़त जो पे नारायण पाईत अनल आकाश पंछी डोल वो करत है। आग में जरत गत राण की परत कर पताल के पास के उभ

रावजी इमाम साफी मानस की जात सब एक पहचान बो करता करीम सोई रास करहीम उई दूसरो न भेद कोई भूल भ्रम मानबो एक ही किसे सब ही को गुरु।

देव जय गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन के भेद को प्रभाव है। एक नैन एक कान एक देह एक बान खाक बाद आतस ओ आप को रलाओ है। अल्लाह फेक सोई पुरान ओ कुरान ओई एक ही स्वरूप सब एक ही बनाओ है। जैसे एक आग दे कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाहेंगे। जैसे एक धूर दे अनेक धूर पूरत है धूर के कनु का फिर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद दे तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहाहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। केते गछ मछ केते उन को करत भछ केते अछ वछ हो सपच उड़ जाहेंगे। केते नव बीच अछ पछ को करेंगे भछ के तक प्रतच हो पत्ताए खाए जाहेंगे। जल कहाँ धल कहाँ गगन के गौन कहाँ काल के बनाए सब काल ही चबाहेंगे। तेज ज्यो तेज में तेज जैसे तीज लीन ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। कुकत फिरत केत रोवत मरत केत जल में डुबत केत आग में जरत है। केत गंगवासी केत मदीना मक्का निवासी केत उदासी के भ्रमाई फिरत है। करवत सहत केत भूम में गड़त केत सुआ पे चढ़त केत दुख को भरत है। गैन में उड़त केत जल में रहत केत ज्ञान के बहीन जग जा रही मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी घास हारे चंदन लगाए हारे जो आचार बोझ हारे पाहर चढ़ाए हारे लापसी गाह हारे गोरन मनाए हारे मड़ी मडली बहारे भीतन लगाए हारे छापसी गाय हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब पच हारे पंडित तप

कर्मं न जन्मं न जातं न मित्रं न सत्रं न पितरं न मातं। न नेहं न गेहं न कामं न धामं न पुत्रं न मित्रं न सत्रं न भामं लेखं भेखं जोनि स्वरूपं सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्धरूपं। नहि जान जाइ गछु रूप रेखं कहा बासता को फिरा कौन वेखं कहा नामता को कहा कह कहा वे कहा कह बखानो कहे मैं न आवे। न रोगं न शोकं न मोहं न मातं न कर्मं न भ्रमं न जन्मं न जातं अद्वेखं अभेखं।

नेहं नगे हंसने हंसनाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न पाते न सत्रे न मित्र सबूते भविखे भवाने अचित्रे नारायं नरंगं न रूपं न रेखं न लोभं न चोभं भूतं फेखं न सत्रं न मित्रं न नेहं नगे हंस देवं सदा सर्व सर्वत्र सनेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं जो नियच्छय अद्वय जोहं न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधं न रोगं न शोकं वैरविखादं अछेदंग भेदंग कर्मंग कालंग खंडंग भंडंग प्रचंडंग प्रपालंग न दतातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न भर्मंग न भायंग न रूपंग न भूपंग न कायंग न कर्मंग न त्रासंग न प्रासंग न भेदंग न भर्मंग सदेवंग सदा सिद्ध वेदंग स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे नृयुक्तं प्रभाद अनुक्तं प्रतापे युक्तंग छयाद विक्ते अथापे विभुक्तंग छयाद अच्छे स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे न नेहं न गेहं न शोकं न साकं परेयं पवित्रं पुनीतं ताकं न जातं न मातं न मित्रं न मंत्रे नमो एक तंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मं न भर्मं न सर्मं न साके न बर्मं न चर्मं न कर्मं न बाके न सत्रं न मित्रं न पुत्रं स्वरूपे नमो आद रूपे नमो आद रूपे कहूं कंज के मंज के भरम भूले कहूं रंग के राज के धर्म लूले कहूं देश के भेष के धर्म थामे कहूं राज के साज के बाजता में कहूं अक्षर के पक्षर के सिद्ध साधे कहे कहूं सिद्ध के बुद्ध के वृद्ध लादे कहूं अंग के रंग के संग देखे कहूं जंग के

नेह गृह कहूँ देह दुख कहूँ औखति रोग के सुख सुख कहूँ देव विद्या कहूँ दैत बानी कहूँ जक्ष गंधर्व किन्नर कहानी कहूँ राजसी सादकी तामसी हो कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हो कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतं कहूँ भूमि की भुगत मैं भरम भुगतं कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हो कहूँ जक्ष विद्या धरे मानवी हो कहूँ राजसी हो कहूँ राज कन्या कहूँ सृष्ट के पृष्ठ के ऋष पन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम वाणी कहूँ कोक की काव कथा कहानी कहूँ अद्र सारंग कहूँ भद्र रूपं कहूँ मद्र वाणी कहूँ छुद्र स्वरूपं कहूँ वेद विद्या कहूँ काव रूपं कहूँ चेष्टा चार चित्रं स्वरूपं कहूँ परम पुराण को पार पावे कहूँ बैठ कुरान के गीत गावे कहूँ शुद्ध शेखं कहूँ ब्रह्म धर्मं कहूँ वृद्ध अवस्था कहूँ बाल कर्मं कहूँ ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूँ नेह देहं कहूँ त्याग करेहं कहूँ जोग भोगं कहूँ रोग रागं कहूँ रोग हर्ता कहूँ भोग त्यागं कहूँ राजसाजं कहूँ राजरितं कहूँ पूर्ण प्रज्ञा कहूँ परम प्रीतं कहूँ आरबी तोर की पारसी हो कहूँ पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूँ देश भाख्या कहूँ देव बानी कहूँ राज विद्या।

कहूँ बीन विद्या कहूँ गान गीतं कहूँ मलेज व्याख्या कहूँ बेदरितं कहूँ नृत्य विद्या कहूँ नागबानी कहूँ गार डूगूढ़ कथा कहानी कहूँ अक्षरा बछरा मच्छरा हो कहूँ वीर विद्या भूतं प्रभा हो कहूँ छल छाला धरे छत्रधारी कहूँ राज साजं थे राजाधिकारी नमो नाथ पूरे।

जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात, जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात, जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान, जय नेह गेह नहीं ब्योत बान, जय जात पात नहीं शत्रु मित्र, जय नेह गेह नहीं चिहन चित्र, जय रंग रूप नहीं राग रेख, जय जन्म जात नहीं भरम भेख, जय गरम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात, जय नाम धाम नहीं वर्ग ब्याद, जय रोग शोक नहीं सत्र साध, जय त्रास वास नहीं देह नाथ, जय आद अंत नहीं रूप रास, जय रोग शोक नहीं जोग जुगत, जय त्रास आस नहीं भूम भुगत, जय काल व्याल कट्यो न अंग, अक्षय स्वरूप अक्षय अभंग, जय नेत नेत उचरंत वेद, जय अलख रूप कथत कतेब, जय अलख रूप आसन अडोल, जय अमित तेज अक्षय अतोल, जय ध्यान काज मुंजन अनंत, कई कल्प जोग साधत दुरंत, तन सीत घाम बरखा सहंत, कई कल्प एक आसन बितंत, कई जतन जोग विद्या विचार साधंत, तत्त पावत न पार, कई ऊर्ध बाह देशन भ्रमंत, कई ऊर्ध मध्य पावक झुलंत, कई सिमृत शास्त्र उचरंत वेद, कई कूक काव कथत कतेब, कई अग्न होत्र कई पावन हार, कई कर्त कूट मृत को हार, कई कर्त साक पै पत्र भच्छ, नहीं तदब देव हो बत प्रत्यक्ष, कई गीत गान गंधर्व रीत, कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत, कहूँ वेद रीत जगे याद करम, कहूँ अग्न होत्र कहूँ तीर्थ धर्म, कई देश देश भाखा रटंत, कई देश देश विद्या पढ़ंत, कई कर्त भांत भांतन विचार, नहीं नैकता सपायतन पार, कई तीरथ तीरथ भरमत सो भरम, कई अग्न होत्र कई देव करम, कई कर्त वीर विद्या विचार, नहीं तदबता सपायतन पार, कहूँ राजरीद कहूँ जोग धर्म, कई सिमृत शास्त्रत उचरत सो करम, न्योली याद करम, कहूँ हस्तदान कहूँ अश्वमेध मुख को बखान, कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार, कहूँ जोग रीत कहूँ बिरध चार, कहूँ करत जच्छ गंधर्व गान, कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घ दान, कहूँ पितृ करम कहूँ वेद रीत, कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत, कहूँ करत शास्त्र सिमृत उचार, कई भजत एक पग निराधार, कई नेह देह कई गेह वास, कई भ्रमत देश देश अनुदास, कई जल निवास कई एक नताप, कई जपत उर्ध लटकंत जाप, कई जपत जो कल्पंग प्रजंत, नहीं तदव तास पायतन अंत, कई कर्त कूट विद्या विचार, नहीं तदव दिष्ट देखे मुरार, बिन भगत सकत नहीं भरत पान, बहु कर्त हो मर जग दान, बिन एक नाम एक चित्त लीन, फोकटो सर्व धर्माभिहीन,

न सिंह है, न स्यार है, न राव है, न रंग है, न मान है, न मौत है, न साक है, न संक है, न जच है, न गंधर्व है, न नर है, न नार है, न चोर है, न साहु है, न साहु कुमार है, न देह है, न गे है, न देह को बनाओ है, न छल है, न छिद्र है, न छल को मिलाओ है, न यंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को स्वरूप है, न राग है, न रंग है, न रेख है, न रूप है, न यंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को बनाओ है, न छल है, न छिद्र है, न छाया को मिलाओ है, न राग है, न रंग है, न रूप है, न रेख है, न कर्म है, न धर्म है, अजन्म है, अभेक है, न तात है, न मात है, अख्याल खंड रूप है, अच्छेद है, अभेद है, न रंग है, न भूप है, परे है, पवित्र है, पुनीत है, पुराण है, अगंज है, अभंज है, करीम है, कुरान है, अकाल है, अपाल है, ख्याल है, अखंड है, न रोग है, न सोग है, न भेद है, न भंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न साध है, प्रिया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमात है, न सीत है, न सोच है, न घ्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र के विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न द्वैग है, न भेख है, न दुई है, न द्रोह है, न काल है, न बाल है, सदीव दयाल रूप है, अगंज है, अभंज है, अभरम है, अभूत है, अछेद छेद है, सदा गंज गंज गंज है, अभूत अवेक है, बलि अरूप राग रंग है, न द्वैग है, न भेक है, न काम क्रोध कर्म है, न जात है, न पात है, न चित्र चिहन परण है, बेअंत है, अनंत है, अनंत तेज जानिए, अभूम अभिज है, सदा छिज

न रूप रेख रार है, न हाव है, न भाव है, न दाव को प्रकार है। गजाधपि नराधपि ग्रंथ सेव है, सदा सिद्धस्पति तपस्पति वनस्पति जप सदा। अगस्त आद जे बड़े तपस्तपि विशेखिये, बेअंत बेअंत बेअंत को ग्रंथ पाठ पेखिये। अगाध आद देव की अनाद बात मानिए, न जात बात मंत्र मित्र सत्र सने जानिए। सदीव सर्वलोके।

भूमका जले थले महे जपत जाप अमंड श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार आदि देवा पार श्रीपद दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता सर्व मान महेंद्र वेद व्यास करे गई दिन कोट इंद्र उपेंद्र जन्म जाता कर्म ज्ञाता

ध्याय ध्याय थके सब कर कोट कष्ट दुरंत। गाय गाय थके गंधर्व नाच पचर पार, सोत सोत थके महासुर पायो नह पार। त्वा प्रसाद दोहरा एक समय श्री आत्मा उचर्यो मत्स्यो बैन, सब प्रताप जगदीश को कहो सकल विद तैन। दोहरा को आत्मा स्वरूप है कहाँ सृष्ट को विचार, कौन धर्म को कर्म है।

चंचला जखंगी अलग भुजंगी धुंध तुरंगण तिछ सरे गर कसा गुठारे नरक निवारे अदम उधारे तूर भुजे दामनी दमंके के हर लंके आद अतंके कूर क्रूर कथे जय जय हो सी रक्ता सुरखंडन शुंभ चक्रतन शुंभ मथे बारज विरोजन प्रतन विमोचन सोज विसोचन कौज कसे दामनी प्रहासे सुख सरनासे सुभ्र सुभासे दुष्ट ग्रस

जय सुनत सुरंग को किल सुन लाजे किल बिखवाजे सुख उपराजे मध उरंग दुर्जन दल दज्जे मंतन रिज्जे सब नफजे रूह रणंग जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन चंड चक्रदन आद गुरंग चाचरी प्रजोधन दुष्ट विरोधन रोष अरोधन क्रूर विते धूमराज विधुंसन प्रलय प्रजुंसन जग विधुंसन शुद्ध मते जाल पाजयंती सत्र मथंती दुष्ट प्रदाहन गाढ़ मते जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन आद जुगाद अगाध गते खत्रियान खतंगी अभ अभंगी आध अनंगी अगाध गते वृड लाच बिहंडन जज छुर दंडन तेज प्रचंडन आद वृते सुर नर प्रतिपारण पति दो धारण दुष्ट निवारण दुख हरे जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन विश्व प्रशंसन सृष्ट करे दामनी प्रकाश अंतरना से ज्योत प्रकाश अतुल बले दान वीव्र करखण सरवर वरखण दुष्ट पथर खण बितल तले अष्टायद वाहन बोन निवाहन संत बनाहन गूढ़ गते जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन आद अनाद अगाध वृते दुख दुख प्रवच्छन सेवक रक्षण संत प्रतक्षण

दुरंत दुख दुख रहत जेह नेत नेत सब वेद कहत। कई उच नीच कीनो बनाओ सब वार पार जाको प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूड क्यों न सेवंत ताहे। कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साधु सूरज सेवंत कई पलट सूरज सिजदा कराए प्रभ एक।

जेह जात पात नहीं भेद भ्रम जेह रंग रूप नहीं एक धर्म जेह सतर मित्र दो एक सार अच्छे स्वरूप अब चल पार जानी न जाए जेह रूप रेख कहे बास तास कहे कौन भे कहे नाम तास है कवन जात जेह सतर मित्र नहीं पुत्र भ्रात करुणा निधान कारण स्वरूप जेह चक्र चयन नहीं रंग रूप जेह खेद भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की करत पाल उर्धंग बिरहद सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल जुद्धंग अनूप जय रूप रेख नहीं रंग राग अंशे जते जान भी जताग जल थल महीप बंतन दुरंत जय नेत नेत निस दिन उचरंत पायो न जाय जय पैर पार दीनान दुख दहता उतार कई कोट इंद्र जह पान हार कई कोट रुद्र जुगिया द्वार कई वेद व्यास ब्रह्मा अनंत जय नेत नेत

दीनन की व्रतपाल करे निज संतु बालक नीवन गारे पछ पशु नक नाग नराध सर्व समय सबको प्रतपार। पोखत है जल में थल में पल में कल के नहीं करम बिचारे दीन दयाल दया निध दोखन देखत है पर देत नहारे। दाहत है दुख दोखन का दल दुजन के बल में दल डारे खंड अखंड प्रचंड बहारण पूर्ण प्रेम की प्रीत संभार। पार न पाए सके पदमा पद भेद कते भेद उचारे रोज ही रात बिलोकित राज रोग रुहान की रोज नटार। कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविख भवान बनाए देव देव खपे अहम वेवना भेव रखियो भ्रम से भरमाए। वेद पुराण कतेब कुरान हसेव थके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पद स्यों किन श्री पदमा पद पाए। आद अनंत अगाध अद्वैत सो भूत भविख भवान अभय अंत विहीन अनात्म अबाधाक अदोक अछिद्र अछह। लोकन के करता हरता जल में थल में भरता प्रवह दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद मापत एह। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न वह देह विहीन स्नेह सबोधन नेह विरक्त गेह छह। जान को दे दे जान को दे दे जमीन को दे दे जमान को दे है काहे को डोलत है तुमरे सुध सुंदर श्री पदमा पतल है। रोगंते और सोगंते जल जोगंते बोभांत बचावे शत्रु अनेक चलावत खावत ऊतन एक न लांकन पावे। राखत है अपनो कर दे कर पाप संभोहन भेट न पावे और की बात कहा कहे तो सौ सो पेट ही के पट बीज बचावे। जच भुजंग सो दानव देव भेव तुम्हें सब ही कर ध्यावे भूम आकाश पताल रसादर जच भुजंग सब सिर न्यावे। पाए सके नहीं पार प्रभा हो को नेत ही नेत वेद बतावे खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानंद से रुम नारग से सब हूँ मिल गायो वेद कतेब न वेद लखयो सब हार भरे हर हाथ रायो। पाए सके नहीं पार उमापद सिद्ध सनात सनंतन ध्यायो ध्यान धरो तह को मन में जह को अमितोज सब जग छायो। वेद पुराण कतेब कुरान अभेद नृपान सब पचहारे भेद न पाए सक्यो अनभेद को खेद तह अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साक न शोक न संग तिहारे आद अनाद अगाद अभेगाद वेख जप्यो तिन्हि कुल तारे। तीर्थ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे देश फिर कर भेष तबोधन केस धरे न मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टांग धरे मोहन्यास करे मुखकारे दीन दयाल अकाल भजे बिना अंत को अंत।

अत्र के चलैया चित छत्र के धरैया छत्र धारियो के छलैया महासत्रन के साल है दान के देवैया महामान के बनैया अवसान के देवैया है कटैया जम जाल है युद्ध के जितैया और विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के दिव्या महामान हो के मान है ज्ञान हो के ज्ञात महाबुद्धता के दाता देव काल हूं के काल महाकाल हूं के काल है पूर्वी न पार बावे हिंगुला हिमालय ध्यावे गोर कर देजी गुण गावे तेरे नाम है जो कि जोग साध पौन साधना की तेग बांधे अरब के अरबी अराध तेरे नाम है फरा के फिरंगी माने कंधारी कुरेसी जाने पच्छम के पच्छमी पछाने निज काम है मरहट्टा मंगेली तेरी मान सो तपस्या कर दृढ़ वैद लंगी पहचाने धर्म धाम है बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंग वाली दिल्ली के दल वाली तेरी आगे में चलत है रोह के रोहेले मांग देश के मंगेले वीर बंग सी बुंदेले बाब पुंज को मलत है गोखा गो न गावे जिन मचीन के शीस ने आवे देवते देहाय दुख देह के दलत है जिन्हें दोहे ध्यायो तीन पूर्ण प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल से फलत है देव देवतान को सुरेश दानवान को महेश गंग धान को अभेश कहियत है रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे नदीन साध दीन कहियत है।

भागी सो छटा के अनमानी है, तेज हूँ को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है के निजंत्र के जानी है। तेज हूँ को तर है के राजसी को सर है के शुद्धता को घर है के सिद्धता की सार है। कामना की खान है के साधना की शान है, विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है। सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूँ को रूप है, गुमत को प्रहार है। दीनन को दाता है के नीमन को कारक है, साधन को रचक है गुणन को पहार है। सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अक्षय अविनाशी है। काम को कुनिंदा है के खूबी को दिहंदा है, के नीमन गरिंदा है के तेज को प्रकाशी है। काल हूँ के काल है के सतरण के साल है, के मित्रण को बोकत है के वृद्धता की वासी है। जोग हूँ को जंत्र है के तेज हूँ को तंत्र है, के रोमोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है। रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है, के सिद्धता को वास है के बुद्ध हूँ को घर है। देवन को देव है निरंजन अभेव है, अदेवन को देव है के शुद्धता को सार है। जान को बचैया है, मान को दिवैया है, जमजाल को कटैया है के कामना को कर है। तेज को प्रचंड है, अखंडन को खंड है, महीवन को मंड है के स्त्री है नर है। विश्व को भरण है के आपदा को हरण है, के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है। पाई है न पार पार अवार हूं को पार, जगो की जत विचार सो विचार को निवास है। हिंगुला हिमालिंगा वे हसी हलपिध्या वे पूर बिना पार पावे असत अनाश है। देवन को देव महादेव हूं के देव है, निरंजन अभेव नाथ अद्वे अविनाशी है। अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है, के सेवक अधीन है कटैया जय मचाल के। देवन के देव महादेव हूं के देवनाथ, भूम के भुजैया है मुहैया महाबाल के। राजन के राजा महासाज हूं के साजा महाजोग हूं को जोग है, धरैया द्रुम छाल के। कामना के कर है के बुद्धता को हर है, के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के। चीर कैसी चीरावत छाज कैसी छतरा नेर, छपा कर कैसी छप काल इंद्री के कूल के। हंसनी से सिहारुम हीरा सी हुसैनाबाद, गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के। पारासी बलाऊगढ़ रूपा कैसी रामपुर, सूरव सी सुरंगाबाद नीके रही झूल के। चंपा सी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदागढ़, कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के। फटक सी के लाज कमाऊगढ़ कांसीपुर, सीसा सी सुरंगाबाद नीके सोहियत है। हिमा सी हिमल हर हार सी हलबा नेर, हंस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है। चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चांद्रगीर, चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोहियत है। गंगा सम गंगधार वकान सी बिरंदाबाद, कीरत तिहारी की उजियारी सोहियत है। फरासी फिरंगी फरासी इसके तुरंगी, मकरान के वृदंगी तेरे गीत गाइयत है। भक्करी गंधारी गोर गखरी, गिरद जचारी पवन के अहारी तेरो नाम ध्यायत है। पूरब पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्व ठौर, मैं विराज जहाँ जहाँ जाइयत है। पूर्ण प्रताप चंद्र मंत्र ते अतापी नाथ की।

जय गुरु गुरु निवास अंतर जामे सच्चे पातशाह जी महाराज धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आप जी दे पावन पवित्र स्थान तक सतखंड दरबार दियां हाजरिया भरदे होए कीर्तन दे सत्काव दे संगता वालों बेंत माया हाजर होए जिस खजाने विच माया हाजर कीती सो सुख जाने भरपूर करना नाम दान गुर सिखी वाला जन बख्शना दे अरुखता बख्शनी आसा मनसा संपूर्ण करनी यात्रा सफल करनी।

करी यह रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर दस कंता, काल पाए ब्रह्मा पप धरा, काल पाए शिवजू अवतरा।

काहूं सिमट भय शंकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट जिते उठव तुत पाता सकल मलेच्छ करो ऋण काता जे अस धुजता शरणी परे तिनके दुष्ट दुखत होए मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार धिए है ताकि काल निकट नह है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्टन जाए निहर हो ताकि ताप तनक मह हर हो।

देखते वो फतेह नुसरत दनान गुरु गोबिंद सिंह जी सरकार दरबार मित्र दरबारा सखन हुसैन लक्ष्मी श्री तुमरे दरबारा सतदे नमस्कार गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी पुर गुरु अवतार जगमग दत्त विराज रही श्री अब चल नगर आबाद सत

अंडज जेर जित पूजा काली सित जा सोमित जाने नानका श्राम राजंता नानक जंतु पाए कह संभाले सबना जिन करता है करना की है चिंता बिकरणीता सो करता चिंता करे जिन उपाया जग तिस जोहारी स्वस्थ तिस तिस